नमस्ते प्यारे सुनने वालों, याद दिलाना कि आप सुन रहे रेडियो आवाज ताजिक और आपका स्वागत है हमारे सांस्कृतिक भाग में। अभी हमने तय किया कि आपको एक महान विज्ञान ज़करिया राज़ी के जीवन के बारे में प्रस्ताव करेंगे। हमारे साथ रहे।

यदि हम अपने पूर्वजों के इतिहास की ओर मुड़ते हैं तो हम पाएंगे कि उन्होंने विज्ञान के विभिन्न विषयों में मूल्यवान और दुर्लभ उपलब्धियां हासिल की। इस संबंध में अध्ययन के अपने यादगार है कि महान महात आज की पीढ़ियों के लिए उनमें से अबू बकर मोहम्मद ज़करिया अल राज़ी का जीवन और वैज्ञानिक कार्य है। अबू बकर मोहम्मद ज़करिया अल राज़ी को पर्शिया, तजिकिस्तान और दुनिया के सबसे महान और जाने माने डॉक्टरों, फिलोसोफर और नेचुरलिस्ट में से एक माना जाता है। उन्होंने अलग अलग साइंस के विकास में अहम योगदान दिया और उन्हें मेडिसिन और नेचुरल साइंस के पायनियर में से एक माना जाता है। अबू बकर मोहम्मद इब्न ज़करिया इब्न याहिया अल राज़ी का जन्म 28 अगस्त 251 हिजरी को रिया शहर में एक कारीगर परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन और जवान

सम्बोसा या दूसरे शब्दों में समसा, समोसा और सोनबोस एक ऐसा भोजन है जिसकी जड़ें इतिहास में जाती है और हर कोई किसी सबूत से इसे इस या उस देश का उत्पाद मानता है। लेकिन सच ये है कि इस प्रकार के भोजन का जन्म खुरासान या दुनिया में ताजिक सभ्यता के केंद्र में हुई थी और इसका मूल रूप सम्बोसा है। अधिकांश वैज्ञानिक इस प्रकार के भोजन का श्रेय फर्स और ताजिक को देते हैं और इसे इस धारणा को भी बल मिलता है कि ये भोजन ताजिकों का है। मानव जाति के इतिहास में पहली बार सम्बोसा का नाम, जो आज तक बिना किसी बदलाव के हम तक पहुंचा है, हजार साल पहले ताजिक वैज्ञानिक अब्दुल फजल बैहकी द्वारा लिखा गया था। इस्माइल गुरगानी, एक अन्य प्रसिद्ध ताजिक वैज्ञानिक, ने अपनी पुस्तक जखीराई खुरज़मशाही में इस नाम से सम्बोसा का उल्लेख किया और स्पष्ट रूप से अनिद्रा के इलाज के लिए सम्बोसाई अलाफिन यानी जड़ी बूटी वाले सम्बोसा खाने की सलाह दी। यदि आप अनिद्रा से परेशान हैं, तो कुक पत्तियों, कद्दू और पालक से सम्बोसा बनाइए। ये वही सम्बोसा है जिसे आज हम ताजिकिस्तान में उसी नाम से बोलते हैं जो 1000 साल से नहीं बदला है। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में सम्बोसा को खुरासान से मुस्लिम व्यापारियों द्वारा भारत लाया गया और ये उनके पसंदीदा व्यंजनों में से एक बन गया। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसराव देहलवी ने दरबारियों और रईसों के बीच एक लोकप्रिय भोजन के रूप में सम्बोसा का उल्लेख किया। इसके अलावा 14वीं शताब्दी की शुरुआत में इब्न बतूता ने भारत के अपने सफरनामे में अतः में पिसा हुआ मांस, प्याज, बादाम, अखरोट के साथ तैयार एक छोटा सा व्यंजन सम्बोसा का उल्लेख किया। विशेषज्ञों के अनुसार सम्बोसा शब्द के जड़े आया भाषा में है और इसे मूल रूप से सम्पुत्ज़ा कहा जाता था। सम्पुत्ज़ा एक सैंडविच जैसा भोजन था जिसे मुख्य भोजन के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। समय के साथ सम्बोसा शब्द बदल कर सम्बोसा या सम्बोसोग फिर सम्बोसा हो गया। आजकल सम्बोसा एक प्रसिद्ध भोजन है जो पतले आटे या चपाती, कीमा हुआ मांस, आलू, सब्जियां आदि के साथ तेल में तला हुआ या ओवन में बेक किया जाता है। आज सम्बोसा दुनिया भर में प्रसिद्ध है और दुनिया के कई देशों जैसे मध्य पूर्व, भारत और उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में पकाया और बेचा जाता है। दुनिया के कुछ देशों में सम्बोसा को भारतीय के रूप में जाना जाता है और विभिन्न रूपों में आधुनिक सम्बोसा को भारतीय सम्बोसा माना जाता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों और उपयोगकर्ताओं की राय के अनुसार आधुनिक तकनीकों की प्रगति के साथ इस समस्या से पर्दा उठ गया है और वे स्वयं इस प्रकार के भोजन की उत्पत्ति को इसकी मूल मातृभूमि का श्रेय देते हैं। सामाजिक नेटवर्क में एक शोध के अनुसार कुछ भारतीय विशेषज्ञ इस शब्द के मूल में संदेह करते हैं। एक विशेषज्ञ ने कहा है, ये आश्चर्य की बात है, हमारा अपना समोसा कभी हमारा था नहीं। सुगंधित भोजन जिसे हम दक्षिण एशिया की मिट्टी से समझते थे, वास्तव में सदियों पहले मध्य एशिया से यहाँ आया था। ये एक ऐसा भोजन है जिसने एक लंबा सफर तय किया है और हर प्रसिद्ध यात्री की तरह रास्ते में आपने पद चिन्ह छोड़ा है। मिस्र से लीबिया तक और मध्य एशिया से भारत तक भरवा त्रिकोण ने

प्यारे श्रोताओं, ताजिक भोजन संबोसा के इतिहास के बारे में हमारे प्रोग्राम को इस समय आपने सुना। अब एक गाना सुनकर कार्यक्रम को जारी देंगे, हमारे साथ रहिए।

नमस्ते प्यारे सुनने वालों, याद दिलाना कि आप सुन रहे रेडियो आवाज ताजिक और आपका स्वागत है हमारे सांस्कृतिक भाग में। अभी हमने तय किया कि आपको एक महान विज्ञान ज़करिया राज़ी के जीवन के बारे में प्रस्ताव करेंगे। हमारे साथ रहे।

यदि हम अपने पूर्वजों के इतिहास की ओर मुड़ते हैं तो हम पाएंगे कि उन्होंने विज्ञान के विभिन्न विषयों में मूल्यवान और दुर्लभ उपलब्धियां हासिल की। इस संबंध में अध्ययन के अपने यादगार है कि महान महात आज की पीढ़ियों के लिए उनमें से अबू बकर मोहम्मद ज़करिया अल राज़ी का जीवन और वैज्ञानिक कार्य है। अबू बकर मोहम्मद ज़करिया अल राज़ी को पर्शिया, तजिकिस्तान और दुनिया के सबसे महान और जाने माने डॉक्टरों, फिलोसोफर और नेचुरलिस्ट में से एक माना जाता है। उन्होंने अलग अलग साइंस के विकास में अहम योगदान दिया और उन्हें मेडिसिन और नेचुरल साइंस के पायनियर में से एक माना जाता है। अबू बकर मोहम्मद इब्न ज़करिया इब्न याहिया अल राज़ी का जन्म 28 अगस्त 251 हिजरी को रिया शहर में एक कारीगर परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन और जवानी अपनी मातृभूमि में बिताई है। किताब अल बीत अल मंसूरी में दी गई जानकारी से पता चलता है कि ये विद्वान अपनी जिंदगी के शुरुआती सालों में एक ज्वेलर और मनी चेंजर के पेशे में थे और एक समय पर उन्हें कीमिया में दिलचस्पी हो गई और उन्होंने केमिस्ट्री की पढ़ाई की। बचपन से ही रज़ी को किताबों, लेखों, क्लबों और बासों के जरिए सांस और लेक्चर सीखने में खास दिलचस्पी थी। उनकी जिज्ञासी और सीखने की इच्छा एक पाल के लिए भी उनकी दूर

रखा गया था। इस्माइल गुरगानी एक अन्य प्रसिद्ध ताजिक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक जखीराई खुरज़मशाही में इस नाम से संबोसा का उल्लेख किया और स्पष्ट रूप से अनिद्रा के इलाज के लिए संबोसाई अलाफिन यानी जड़ी बूटी वाले संबोसा खाने की सलाह दी। यदि आप अनिद्रा से परेशान हैं, तो कुक पत्तियों कद्दू और पालक से संबोसा बनाए। ये वही संबोसा है जिसे आज हम ताजिकिस्तान में उसी नाम से बोलते हैं जो 1000 साल से नहीं बदला है। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में संबोसा को खुरासान से मुस्लिम व्यापारियों द्वारा भारत लाया गया और ये उनके पसंदीदा व्यंजनों में से एक बन गया। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसराव देहलवी ने दरबारियों और रईसों के बीच एक लोकप्रिय भोजन के रूप में संबोसा का उल्लेख किया। इसके अलावा 14वीं शताब्दी की शुरुआत में इब्न बतूता ने भारत के अपने सफरनामे में अतः में पिसा हुआ मांस प्याज बादाम अखरोट के साथ तैयार एक छोटा सा व्यंजन संबोसा का उल्लेख किया। विशेषज्ञों के अनुसार संबोसा शब्द के जड़े आया भाषा में है और इसे मूल रूप से संपुत्जा कहा जाता था। संपुत्जा एक सैंडविच जैसा भोजन था जिसे मुख्य भोजन के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। समय के साथ संबोसा शब्द बदलकर संबोसा या संबोसोग फिर संबोसा हो गया। आजकल संबोसा एक प्रसिद्ध भोजन है जो पतले आटे या चपाती कीमा हुआ मांस आलू सब्जियां आदि के साथ तेल में तला हुआ या ओवन में बेक किया जाता है। आज संबोसा दुनिया भर में प्रसिद्ध है और दुनिया के कई देशों जैसे मध्य पूर्व भारत और उत्तरी अफ्रीका यूरोप और अमेरिका में पकाया और बेचा जाता है। दुनिया के कुछ देशों में संबोसा को भारतीय के रूप में जाना जाता है और विभिन्न रूपों में आधुनिक संबोसा को भारतीय संबोसा माना जाता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों और उपयोगकर्ताओं की राय के अनुसार आधुनिक तकनीकों की प्रगति के साथ इस समस्या से पर्दा उठ गया है और वे स्वयं इस प्रकार के भोजन की उत्पत्ति को इसकी मूल मातृभूमि का श्रेय देते हैं। सामाजिक नेटवर्क में एक शोध के अनुसार कुछ भारतीय विशेषज्ञ इस शब्द के मूल में संदेह करते हैं। एक विशेषज्ञ ने कहा है, ये आश्चर्य की बात है, हमारा अपना समोसा कभी हमारा था नहीं। सुगंधित भोजन जिसे हम दक्षिण एशिया की मिट्टी से समझते थे वास्तव में सदियों पहले मध्य एशिया से यहाँ आया था। ये एक ऐसा भोजन है जिसने एक लंबा सफर तय किया है और हर प्रसिद्ध यात्री की तरह रास्ते में अपने पद चिन्ह छोड़ा है। मिस्र से लीबिया तक और मध्य एशिया से भारत तक भरवा त्रिकोण ने विभिन्न नामों से वैश्विक लोकप्रियता हासिल की है। प्यारे श्रोताओं, ताजिक भोजन संबोसा के इतिहास के बारे में हमारे प्रोग्राम को इस समय आपने सुना। अब एक गाना सुनकर कार्यक्रम को जारी देंगे, हमारे साथ रहिए।